0: जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता
1: ना।
2: Kedai FM, 3 kali mendengar Kedai FM di mana jual? Gunung Jerai 97.5.